गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. एक्झॅक्टली आता 7:12 वेळ झालेली आहे. आय होप की तुमची झोप वगैरे पूर्ण झाली असेल. और मंडे आ गया है. और पता है मंडे को लोग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते. एक जो अलार्म बंद करके बोलते भाई बस 5 मिनट और दूसरे जो उठ के लाइफ को बोलते चैलेंज एक्सेप्टेड डियर. नई सुबह है, नया हफ्ता है, पीछे वीक की टेंशन, ऑकवर्ड मोमेंट्स, पेंडिंग काम सबको थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि हर मंडे एक रिसेट बटन लेकर ही आता है. आज का दिन परफेक्ट हो या ना हो, बस एक काम करना, शुरुआत पॉजिटिव करना, एक गर्म चाय, थोड़ी सी स्माइल और खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखना, बाकी वीक अपने आप सेट हो ही जाएगा. तो चलिए फिर दोस्तों, नींद वाले फेसेस को एनर्जेटिक बनाते हैं, ट्रैफिक को म्यूजिक से इजी बनाते हैं और इस मंडे को बोरिंग नहीं मेमोरेबल बनाते हैं. मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ लौट कर आऊंगा कुछ ही देर में. तब तक के लिए एंजॉय करना फ्रेश मूड करने वाला ये फ्रेश सा गाना. ओनली ऑन MGM 90.8 FM पर है बजाना.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। कभी कभी जिंदगी एकदम थम जाती है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना लोग, ना बातें, ना खुद का चेहरा। आज की कहानी है आयुष की, एक 25 साल का लड़का जो हमेशा सबको हंसाता रहता था पर खुद अंदर ही अंदर चुपचाप टूट रहा था। सब नोटिस करते थे कि आयुष बदल गया है, लेकिन किसी ने पूरा पूछा नहीं। उसने भी किसी को कुछ बताया नहीं, बस थक गया हो कहकर मुस्कुराता रहता। लेकिन एक दिन जब उसने अपने डायरी में लिखा, शायद मुझे किसी से बात करनी चाहिए, वहीं से कहानी बदली। उसने पहली बार अपने कॉलेज के काउंसलर से बात की, पहली बार अपने दोस्तों को अपना दर्द के बारे में बताया, और सबने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा। न जज किया, न ज्ञान दिया, बस साथ दिया। थोड़ा थोड़ा करके आयुष ने लिखना शुरू किया, फिर वॉक पे जाना, और एक साल बाद आज आयुष एक एनजीओ के साथ काम करता है, उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। डिप्रेशन एक अंधेरा है, भरा अंधेरे में एक छोटी रोशनी होती है, बस जरूरत होती है उस रोशनी तक हाथ बढ़ाने की। अगर आप या आपका कोई ऐसे फेस से गुजर रहा है तो याद रखिएगा, बात करना जरूरी नहीं होता, पहला कदम उठाना जरूरी होता है, उसके बाद बात करना भी जरूरी होता है। क्या पता आपका भी दोस्त किसी ऐसी चीज से गुजर रहा हो तो उससे बात करके देखिएगा, पूछिएगा कि क्या हुआ। सबसे पहले बताएगा, कुछ नहीं यार, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उस बढ़िया के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है, समझिएगा और सुनते रहिएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. All is well. सुबह उठते ही ना तो हम सबका पहला प्यार क्या होता है बताएं, मोबाइल फोन। सुबह उठते हम सबसे पहले चेक करते किसी का नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज आया, बरोबर ना। लेकिन अगर एक छोटी सी हैबिट चेंज करना है तो हेल्थ को बहुत फायदा हो सकता है इससे, और वो हैबिट है सुबह खाली पेट एक ग्लास पानी पीना। इसका फायदा भी बहुत सिंपल है और बहुत खास है। बॉडी हाइड्रेट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो जाता है। मतलब बॉडी को एक नेचुरल गुड मॉर्निंग मिल ही जाता है। बहुत लोग ना बोलते हैं कि मॉर्निंग में टायर्ड फील होता है यार, कभी रीजन सिर्फ डिहाइड्रेशन भी होता है। और हाँ, सुबह पानी पीने से स्किन फ्रेश फील करती है और बॉडी के टॉक्सिस को फ्लश आउट करने में भी मदद होती है। तो कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करो। अलार्म बजे मोबाइल साइड में रखो और एक ग्लास पानी से दिन की शुरुआत करो। छोटी आदत लेकिन हेल्थ के लिए बड़ा फायदा, समझे? स्टे ट्यून।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी, ऑल इज वेल. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ MGM यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. सो मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि कंपनीज और HR डिपार्टमेंट्स को एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
1: देखिए, HR हर एक कंपनी के बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट होते हैं, डेफिनेटली. सो इनफैक्ट HR डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके वेलबींग की. तो उन्होंने मतलब मेंटल हेल्थ डेज या यू नो मेंटल हेल्थ लीव है ना, 2 महीने में एक दिन या जो भी मतलब उनकी कंपनी पॉलिसी अलाउ करे, या अगर वो कोई एक नई पॉलिसी बना पाए इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ लीव्स, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी डायनामिक. अगर वो कर सके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. प्लस हर एक कंपनी ने काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जैसे एक दो एम्प्लॉयज़ हैं जो है ना, हर कंपनी में हर डिपार्टमेंट में होता ही है मोस्टली, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं. अब ये एक दो टॉक्सिक लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है. तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ डेफिनेटली HR ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. तो ये कुछ है ना, 3 चीज़ें हैं. तो ये HR को स्ट्रिक्टली अगर इन्होंने फॉलो की तो वर्क एनवायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है.
0: वैसे इस तरीके से भी HR डिपार्टमेंट काम कर सकता है ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ ठीक रह सके. वैसे एक सवाल भी ऐसा है, अगर बॉस ही सब फसाद की जड़ हो तो एम्प्लॉय क्या करे? खैर, जोक अपार्ट. बाय द वे दोस्तों, आपके भी मन में ऐसे कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर. एंड स्टे ट्यून्ड.

0: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो All is आज की सुबह एकदम बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके साथ आता हूँ। इसी के साथ आपकी फरमाइशें भी पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास अभी ना तो एक बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आई है। ये गाना उन सभी कपल्स के लिए है जो आज के सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं, और इस गाने की फरमाइश की है अनिकेत जगताप जी ने।
1: हवा के साथ साथ

0: फिल्म सीता और गीता है जो कि 1972 में आई थी और जहां हिमा मालिनी और संजीव कपूर की केमिस्ट्री ने जादू चला दिया था। किशोर कुमार और आशा भोसले जी की बेहतरीन आवाज है हवा के साथ साथ घटा के संग संग। आनंद बख्शी जी ने इसको लिखा था और आर डी बर्मन जी का संगीत है। चलिए फिर साथ साथ ये गाना सुनते हुए हम अपने सफर पर निकलते हैं। और भी आपकी कुछ गाने की फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। फिलहाल ये फरमाइश पर गाना अभी हम एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ,

एक वक्त था जब पेट्रोल ना तो 90 रुपए 80 रुपए ऐसे प्रति लीटर मिलता था, और आज भाई सेंचुरी इसने क्रॉस कर दिया है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले जब पेट्रोल के रेट्स ना 100 रुपए लीटर हो गए थे ना, तो बहुत हल्ला मचा था। उसके बाद लग रहा था कि पेट्रोल कभी सस्ता होगा, लेकिन ये कभी होते हुए नजर नहीं आया। तब से लेकर आज तक बस रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और दुनिया भर में बस सन्नाटा छा चुका था। मतलब देखो, कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं करता है, बस चलता है, चलने दो बोलकर चल ही रहा है। और इसका सीधे सीधे असर किस पर होता है? आम आदमी के जेब के ऊपर। क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा है कि पेट्रोल के और डीजल के रेट्स चुके हैं 3-3 रुपए प्रति लीटर, जिसके रेट बढ़ गया है, यानी कि 117 रुपए पेट्रोल हो गया है और 100 रुपए प्रति लीटर डीजल हो चुका है। और एक बार जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए तो नीचे आने का नाम कभी लेते ही नहीं है, ये हमें इतिहास बताता है। हमने पीछे भी देखा है, देखो एक साइड से महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बस बढ़ती ही जा रही है, और दूसरे साइड हमारी इनकम जितने की उतनी है। और लेकिन इस वक्त ना तो ऑटो LPG वालों को थोड़ा रिलीफ मिल चुका है। 125 रुपए जहाँ पर इसके रेट थे तो वो थोड़े तो 21 रुपए से वो थोड़े कम हो चुके हैं, और 104 रुपए LPG का रेट हो चुका है आज के वक्त में। तो LPG वालों को थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन पेट्रोल और डीजल में बहुत बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस महंगाई के चक्कर में बस पिसता आम आदमी है। स्टे ट्यून्ड।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.
2: हर दिल की आवाज बने.
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
2: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे.
3: ये दूरियां,
2: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात. MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MSM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। इस खूबसूरत सोमवार की शाम में सबसे पहले आप सभी को प्यारी सी हैप्पी मंडे इवनिंग। हाँ, मंडे को लोग अक्सर थोड़ा भारी मान लेते हैं, लेकिन सोचिए ये वही दिन है जो हमें एक नई शुरुआत देता है, नया हौसला, नया प्लान्स और पूरे हफ्ते को शानदार बनाने का मौका। तो अगर आज का दिन थोड़ा भाग दौड़ भरा रहा हो, ऑफिस का काम, कॉलेज की टेंशन या ट्रैफिक की थकान, तो अब बस रिलैक्स कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, चाय या कॉफ़ी का कप उठाइए और अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। शाम का ये वक्त बहुत खास होता है दोस्तों, दिन की थकान धीरे धीरे उतरती है और दिल चाहता है कुछ अच्छा सुनने का, कुछ ऐसा जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। और यही कोशिश रहती है हमारी इस शो की, आपकी शाम थोड़ी हल्की, थोड़ी खुश और थोड़ी यादगार बन जाए। तो आज के इस मंडे इवनिंग पर खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि चाहे हफ्ता कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी खुशी के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि मुस्कुराते रहना भी बहुत ज़रूरी है। और अब वक्त है शानदार गानों, प्यारी बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इस दौड़ में अक्सर सबसे ज्यादा कुछ पीछे छूट रहा है, तो वो हमारी सेहत और मन की शांति। इसीलिए आज का एक छोटा सा मंत्रा है, योगा से ही होगा। जी हाँ, योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जो जिंदगी को अंदर से बेहतर बनाती है। सुबह के कुछ मिनट अगर हम अपने शरीर को, सांसों को दे, तो पूरा दिन हल्का, पॉजिटिव और एनर्जी से भरा महसूस होता है। योग हमें सिखाता है बैलेंस, काम का और आराम के बीच का बैलेंस, सोच और सुकून के बीच का बैलेंस, और सबसे ज़रूरी, खुद के साथ जुड़ने का बैलेंस। आजकल स्ट्रेस, टेंशन और मोबाइल की भागदौड़ में मन बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों का प्राणायाम, मेडिटेशन या हल्का सा योग आपके मूड को पूरी तरह बदल सकता है। बोलते दोस्तों, अगर जिंदगी में खुश रहना है, मन को शांत रखना है और दिन को बेहतर बनाना है, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, योग अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, और ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साथ हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है, जैसे बारिश और म्यूजिक, सफ़र और दोस्त, और सबसे खास चाय और खारी। सच बताइए, शाम की हल्की ठंडी हवा हो, हाथों में गर्मा गर्म चाय का कप हो और साथ में कुरकुरी खारी, तो पूरा मूड ही फ्रेश हो जाता है। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का छोटा सा खुशी वाला पल है। ऑफिस की थकान हो, घर की बातें हो या दोस्तों के साथ गपशप, चाय और खारी हर माहौल को थोड़ा और ख़ास बना देते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन में कोई दिखावा नहीं है, सीधा सिंपल और दिल से जुड़ा स्वाद है। एक तरफ चाय की गर्माहट, दूसरी तरफ खारी की हल्की कुरकुराहट, मतलब परफेक्ट मैच। कई लोगों की शाम तो तब तक पूरी नहीं होती जब तक कटिंग चाय और खारी ना मिल जाए, और अगर साथ में पुराने गाने चल रहे हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज की इस प्यारे से शाम में अगर मौका मिले तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, चाय बनाइए, खारी उठाइए और ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों का मज़ा लीजिए, क्योंकि खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में ही मिलती है। कभी कभी वो एक कप चाय और दो खारी में भी छुपी हो सकती है। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: अब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
4: Attention future researchers and innovators.
5: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus, it's LLB Nantar LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights Madhe 2 Varshi Tar Business Madhe 1 Varsha Cha Vishesh Abhyaskram.
4: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
5: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दुनिया में बहुत तरह के इनकलाब होते हैं, कहीं सोच बदलती है, कहीं वक्त बदलता है, लेकिन एक इनकलाब ऐसा भी होता है जो चुपचाप दिलों में जन्म लेता है और उसका नाम है मोहब्बत का इनकलाब। मोहब्बत सिर्फ किसी को चाहने का नाम नहीं है, ये वो एहसास है जो इंसान को बेहतर बनाता है, कभी किसी की फिक्र बनकर, कभी किसी की ताकत बनकर, तो कभी सिर्फ एक मुस्कान बनकर जिंदगी बदल देता है। आज के दौर में जहां लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, रिश्ते छोटे छोटे बातों में टूट जाते हैं, वही मोहब्बत का असली इनकलाब है कि हम एक दूसरे को समझें, वक्त दें और दिल से जुड़े। मोहब्बत में आवाज ऊंची नहीं होती, एहसास गहरे होते हैं, इसमें जीत हार नहीं होती, बस अपनापन होता है। और सच कहे तो अगर दुनिया में थोड़ा और प्यार, थोड़ा अपनापन बढ़ जाए तो शायद बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो आज के शाम अपने दिल में मोहब्बत की छोटी सी रोशनी जलाइए, किसी अपने को याद कीजिए, किसी रूठे हुए को मनाइए या बस खुद से थोड़ा प्यार कर लीजिए, क्योंकि हर खूबसूरत बदलाव की शुरुआत मोहब्बत से ही होती है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं शो में और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। ट्रैफिक वाली बात करनी चाह रही हूँ आज आपसे। शहर की जिंदगी में एक चीज कॉमन है, ट्रैफिक। कभी ऑफिस से घर जाते हुए, कभी किसी काम के रास्ते में, सिग्नल, हॉर्न, लंबी लंबी लाइनें, और सच कहे कई बार ये ट्रैफिक हमारा मूड भी खराब कर देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस ट्रैफिक को ही अपना मी टाइम बना ले। सोचिए, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बाहर शहर अपनी रफ्तार में है और अंदर आप अपने मन पसंदीदा गाने सुन रहे हैं, थोड़ी देर खुद के साथ वक्त बिता रहे हैं। हर वक्त जल्दी में रहना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें मजबूरी में ही सही थोड़ा रुकना सिखा देती है और शायद वही पल हमें खुद से जोड़ देता हो। ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करने से रास्ता जल्दी साफ नहीं होता, लेकिन अगर उसी वक्त को हल्का बना लिया जाए अच्छा म्यूजिक, पॉजिटिव सोच और थोड़ी सी मुस्कान के साथ, तो सफर और भी आसान लगने लगता है। कभी अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चलाइए, कभी पुराने यादों में खो जाइए या बस खिड़की के बाहर देखते हुए शहर की कहानी महसूस कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, रास्तों को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। अगली बार जब आप ट्रैफिक में मिले उसे टेंशन नहीं, अपना छोटा सा मी टाइम समझिए और इसी पॉजिटिव मूड के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अपने बेहतरीन गाने। ओनली ऑन MGM 90.4 फिल्म साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आपके साथ इस नए हफ्ते की ताजगी भरी शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नया हफ्ता मतलब नई शुरुआत है और इस नए शुरुआत के साथ आता है नया मौका अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाने का। लेकिन कई बार पूरा हफ्ता बस भाग दौड़ में निकल जाता है और बाद में लगता है अरे जो सोचा था वो तो रह ही गया। इसलिए आज की छोटी सी बात है, प्लान योर न्यू वीक। जी हाँ, अगर हफ्ते की शुरुआत थोड़ी प्लानिंग के साथ हो तो काम भी आसान लगते हैं और मन भी ज्यादा शांत रहता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो, बस छोटे छोटे गोल्स बनाइए। कौन सा काम पहले करना है, किस चीज के लिए वक्त निकालना है और सबसे जरूरी खुद के लिए भी थोड़ा टाइम रखना है, क्योंकि सिर्फ काम करना ही जिंदगी नहीं है दोस्तों। अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपने लोगों के साथ वक्त देना भी उतना ही जरूरी है। और जब प्लानिंग क्लियर होती है ना तो स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है और पूरा हफ्ता ज्यादा बैलेंस महसूस होता है। तो इस नए हफ्ते में सिर्फ दिन मत गिनिए, हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। एक डायरी में लिखिए, मोबाइल में नोट्स बनाइए या बस मन में तय कर लीजिए कि इस हफ्ते खुद का बेस्ट वर्जन बनाएंगे। और ऑफ कोर्स याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे कदम बड़ी बदलाव की ओर लेकर जाते हैं हमें। इसी के साथ सुनते हैं कुछ और भी बेहतरीन गाने, ओनली ऑन एमजे 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आपके साथ इस नए हफ्ते की ताजगी भरी शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहती हूं, नया हफ्ता मतलब नई शुरुआत है और इस नए शुरुआत के साथ आता है नया मौका अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाने का। लेकिन कई बार पूरा हफ्ता बस भाग दौड़ में निकल जाता है और बाद में लगता है अरे जो सोचा था वो तो रह ही गया। इसलिए आज की छोटी सी बात है, प्लान योर न्यू वीक। जी हाँ, अगर हफ्ते की शुरुआत थोड़ी प्लानिंग के साथ हो तो काम भी आसान लगते हैं और मन भी ज़्यादा शांत रहता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो, बस छोटे छोटे गोल्स बनाइए। कौन सा काम पहले करना है, किस चीज़ के लिए वक्त निकालना है और सबसे ज़रूरी खुद के लिए भी थोड़ा टाइम रखना है, क्योंकि सिर्फ काम करना ही ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपने लोगों के साथ वक्त देना भी उतना ही ज़रूरी है। और जब प्लानिंग क्लियर होती है ना तो स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है और पूरा हफ्ता ज़्यादा बैलेंस महसूस होता है। तो इस नए हफ्ते में सिर्फ दिन मत गिनिए, हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। एक डायरी में लिखिए, मोबाइल में नोट्स बनाइए या बस मन में तय कर लीजिए कि इस हफ्ते खुद का बेस्ट वर्जन बनाएंगे। और ऑफ कोर्स याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे कदम बड़ी बदलाव की ओर लेकर जाते हैं हमें। इसी के साथ सुनते हैं कुछ और भी बेहतरीन गाने ओनली ऑन एमजे 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
0: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
2: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट। जॉइन MGM यूनिवर्सिटी IHM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट नाउ एट 8793047544 और विजिट mgmu.ac.in।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

0: देखते ही देखते ये खूबसूरत मंडे इवनिंग अब धीरे धीरे विदा लेने लगी है और सच कहे तो हर शाम अपने साथ कुछ छोटी छोटी यादें छोड़ जाती है। पूरे दिन की भागदौड़, काम की बातें, ट्रैफिक की थकान और जिम्मेदारियों के बीच अगर इस शाम के कुछ पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला पाए तो हमारा साथ सफल हो गया। दोस्तों, मंडे को अक्सर लोग थोड़ा भारी मानते हैं, लेकिन अगर कुछ शुरुआत मुस्कुराकर हो जाए तो पूरा हफ्ता भी आसान लगने लगता है। और आज की शाम का यही छोटा सा संदेश है कि हर नए दिन को पॉजिटिविटी के साथ अपनाइए। अब रात धीरे धीरे गहराने लगी है, शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है और यही वक्त है खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का, मन को शांत करने का और आने वाले दिनों के लिए नई एनर्जी जुटाने का। तो अगर आज कुछ अधूरा रह गया हो, कोई काम, कोई बात या कोई सपना, तो चिंता मत कीजिए, कल एक नई सुबह फिर मौका लेकर आएगी। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, बस जरूरी है कि हर शाम को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहे और हर सुबह का स्वागत पूरे स्वैग से करे। ऑफ कोर्स मैं चलती हूँ, फिलहाल आपसे इजाजत लेती हूँ। अब इस प्यारे सी मंडे इवनिंग को कहते हैं गुड बाय और थैंक यू इस खूबसूरत यादों को बनाने के लिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.9 एफएम, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

एक वक्त था जब पेट्रोल ना तो 90 रुपए 80 रुपए ऐसा प्रति लीटर मिलता था, और आज भाई सेंचुरी ने क्रॉस कर दिया है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले जब पेट्रोल के रेट्स ना 100 रुपए लीटर हो गए थे ना, तो बहुत हल्ला मचा था। उसके बाद लग रहा था कि पेट्रोल कभी सस्ता होगा, लेकिन ये कभी होते हुए नजर नहीं आया। तब से लेकर आज तक बस रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और दुनिया भर में बस सन्नाटा छा चुका था। मतलब देखो, कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं करता है, बस चलता है, चलने दो बोलकर चल ही रहा है। और इसका सीधे सीधे असर किस पर होता है? आम आदमी के जेब के ऊपर। क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा है कि पेट्रोल के और डीजल के रेट्स बढ़ चुके हैं 3-3 रुपए प्रति लीटर, जिसके रेट बढ़ गया है, यानी कि 117 रुपए पेट्रोल हो गया है और 100 रुपए प्रति लीटर डीजल हो चुका है। और एक बार जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए तो नीचे आने का नाम कभी लेते ही नहीं है, ये हमें इतिहास बताता है। हमने पीछे भी देखा है, देखो एक साइड से महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बस बढ़ती ही जा रही है, और दूसरे साइड हमारी इनकम जितनी की उतनी है। और लेकिन इस वक्त ना तो ऑटो LPG वालों को थोड़ा रिलीफ मिल चुका है। 125 रुपए जहाँ पर इसके रेट थे तो वो थोड़े तो 21 रुपए से वो थोड़े कम हो चुके हैं, और 104 रुपए LPG का रेट हो चुका है आज के वक्त में। तो LPG वालों को थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन पेट्रोल और डीजल में बहुत बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस महंगाई के चक्कर में बस पिसता आम आदमी है। स्टे ट्यून।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
4: Attention future researchers and innovators.
5: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus it's LLB Nantar Kara LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights Madhe 2 Varshi Tar Business Madhe 1 Varshaza Vishesh Abhyaskram.
4: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
5: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942999.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सर
1: वो यहीं पर
2: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM,
1: साथ है तो बात है।